नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला। अहाँ सब सुनि रहल छी मिथिला गूंज, अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन आवाज। हमरा बुझाया किछु तकनीकी खराबी छै, जाहिके चलते अहाँ सबके आवाज किछु और आवाज आबि रहल अछि,

उन्हें साहब फोन करके बताओ जे अहाँ सबके सेहो ई आवाज सुनाई दऽ रहल अछि। एखन हमरा तकनीकी किछु व्यवधान बुझा रहल अछि, एक मिनट के समय हम आर लेब आ फेर हम बहुत जल्दी उपस्थित भऽ रहल छी।

0: नमस्कार, आइ हमरा बुझा रहल अछि जे ध्वनि देवता कनिक कुपित छथिन, जाहिके कारण अहाँ सबके सहीसँ आवाज नहि आबि रहल अछि। आओर ई बातके हमरा खेद रहत जे अपने सबसँ हम जे जुड़ि रहल छी ओ अहाँ सबके आवाज बहुत बढ़िआँ जकाँ नहि सुनाइ दऽ रहल अछि, परन्तु जे छै ओकरा हम रिकॉर्ड करब आओर फेरसँ ब्रॉडकास्ट करब। फिलहाल हम एकरा जे छै से शुरू करै छी। तऽ जेना अहाँ सबके पता अछि, हमर नाम भेल शिशिरेन्दु कुमार झा आर अहाँ सब सुनि रहल छी मिथिला गूंज, अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन आवाज, 2000 98.5 सिडनीसँ हृदयसँ संसार भरिके मैथिलके बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आइके विशेष यात्रामे हमर सङ्ग छथि दूटा आदरणीय अतिथि, जिनकर नाम भेलनि ममता कुमारी जी आओर श्वेता सिंह जी, क्षमा करब, श्वेता सिन्हा जी। जी,
1: प्रणाम सब श्रोतागणके आओर बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब सुबह सुबह उठिके सुनै छी हमर सबके कार्यक्रम आओर एहिमे हमरा सबके मौका भेटैए कि अपन जे भी मिथिला संस्कृतिसँ रिलेटेड जानकारी अइ से अहाँ सब तक पहुँचाउ, तऽ एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आ चलू कार्यक्रमके शुरू करै छी।
2: प्रणाम सभी श्रोता लोकिन, आज हम शब्दों के माध्यम से महाकवि विद्यापति के युग में चलेंगे और फिर मिथिला के उन पावन स्थानों की यात्रा करेंगे जहां इतिहास, भक्ति, कला और लोक जीवन भी आज भी सांस लेते हैं। थैंक यू सो मच और हम शुरू करते हैं अब।
0: वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया ममता जी। तो आज के जे प्रोग्राम है ये कंटिन्यूएशन है लास्ट दूटा प्रोग्राम के। पिछला दोनों एपिसोड में अहाँ सब सुनने हैं मिथिला के हिस्ट्री, और मिथिला के हिस्ट्री के क्रम में हम सब पहुँच गए रही ईयर 1200 के आसपास, जहाँ कि एकटा एहन क्रांति अलै साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जाय के बाद जे साहित्य के छै, साहित्य के जे जे चेहरा छै से बदल गेले, और ई क्रांति के नाम छै विद्यापति। ओना बहुत सारा भ्रांति छै विद्यापति के लऽ कऽ, हिनकर जन्म कतौ भेलनि, कहिया भेलनि, केना रहलखिन, की भेलनि। तऽ आइ जतेक रहस्य अछि अहाँ सबके हर रहस्य सँ पर्दा उठत। हमरा सबके संगे विशेषज्ञ छथि, आर एहिसँ पहिने कि हम आगाँ बढ़ी, अहाँ सबके याद दिया दी जे आबयवला 17 अक्टूबर सँ 19 अक्टूबर तक की होवला छै। आओर जेना पछिला बेर हम सब दूटा टिकट देने रहियनि विजेता के, एहि बेर सेहो अहाँ सबके एकटा क्विज रहत, और क्विज के प्रश्न अपने सबके बहुत शीघ्र आयत। तो अपने सब बनल रहू, सुनैत रहू। कार्यक्रम के जानकारी देवा के लेल खुशी जी छथि, तो 17 अक्टूबर सँ 19 अक्टूबर तक की हो वाला छै खुशी जी?
3: नमस्कार श्रोतागण, उम्मीद करै छी सब गोटा बढ़िया है। तो 17 अक्टूबर सँ 19 अक्टूबर तक सिडनी में फर्स्ट टाइम मिथिला कल्चरल सोसाइटी दुर्गा पूजा कऽ रहल छथिन माँ भगवती के कृपा सँ। एहि बेर मिथिला महोत्सव सेहो एहि संगे हैत आर पूरा बंच छै, प्लीज आउ। डांडिया सँ लऽ कऽ जगराता सब सब चीज एके जगह छै। मिथिला के खोइछा भरऽ सँ लऽ कऽ कन्या भोजन, तऽ हमरा बुझाए खाली मिथिला तक सीमित नहि छै, हमरा बुझाए पूरा इंडिया लेल छै आ मिथिला फेमस छै होस्टिंग लेल। तऽ प्लीज आउ, बढ़िआँ लागत।
0: एहिपर हमसब बातचीत जारी राखब खुशी जी। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके इन्फॉर्मेशन के लेल। किनको पास यदि प्रश्न अछि तऽ अपन प्रश्न के भेजू 0426 395 298। हम फिर से रिपीट करै छी 0426 395 298। और अधिक जानकारी के लेल हमर सबके वेबसाइट विजिट करू www.mithilaculturalsociety.au www.mithilaculturalsociety.au। तब भोर के 8:12:27 भऽ चुकल अछि सिडनी में, आब एतयसँ जे छै से कार्यक्रम हमसब शुरू कऽ रहल छी। जेना कहलहुँ, ध्वनि के आइ कनिक जे गुणवत्ता छै से बहुत बढ़िआँ नहि छै, अपने सब क्षमा करब, अपने सब कनिक एहिमे हमरा सबके क्षमा करू। और अगला बेर से ई समस्या नहीं हेतै, अई बात के प्रॉमिस है। तो ठीक है, जना हमर पहिल प्रश्न है ममता जी से, जे लोक बुझे छथिन विद्यापति के, जे विद्यापति श्रृंगार रस के कवि छथिन, लेकिन जहन हुनकर कविता पढ़ल जाय छन तो ओ मात्र श्रृंगार रस के कवि नहीं छथिन, ओहिमे विरह छै, वेदना छै, ओहिमे प्रार्थना छै भगवती से या जे कोनो भगवान से। हुनकर बहुत फेमस बहुत सारा एहन गाना सब छै जाहिमे जे कृष्ण भगवान के ऊपर छै, शंकर भगवान के ऊपर छै। तो यदि हम अहाँ से अहाँ के ओहि समय में लौ चली यार, विद्यापति के जे सबसे फेमस अहाँ के स्टोरी पता है या बुझल है, ओहि विषय में अगर अहाँ किछु बाजय चाहे छी तो दर्द हमर श्रोता सबके किछु बतबियौ।
1: जी बिल्कुल, तो विद्यापति जी इतने महान कृति छथिन जिनका शब्दों में बताना ही हमरा बुझाए कि बहुत कम हो जेतै, और हमर बस के बात नहीं कि हुनकर व्यक्तित्व के हम पूरा तरह से उजागर कऽ सकी। जेना कि अखन कहलखिन हैं जे हुनकर जे छै प्रभाव हर रूप में देखल जाय छै, ओ भक्ति रस में छथिन, जे जतौ ओ शिव जी के आराधना करै छथिन ओ शक्ति रूप में, शक्ति रूप के सेहो आराधना केने छथिन। हुनकर बहुत सारे कविता और पदावली छै जे कि शक्ति के समर्पित छन। ओहि हिसाब से अगर देखल जाय तो स्टार्टिंग अपन जीवनी के स्टार्टिंग में जे केलखिन ओ छलन हुनकर राधा और कृष्ण के प्रेम के दर्शावे के पदावली छन, जाहिमे ओ राधा कृष्ण के भक्ति से और ऊपर लऽ जाकर ओ एकटा जे प्रेमी होइ छै ओकर पूरा मतलब एक प्रेम प्रसंग के प्रेमी के सब मार्मिक दर्द और जे भी हुनकर जे भावना होइ छै ओ सब के लिखने छथिन। तो कहो के मतलब छै कि और अगर देखल जाए तो ओ इहो लिखने छथिन कि अपन सब के जे विवाह परंपरा छै ओहिमे या जे जे संस्कार पर जते संस्कार परंपरा छै ओ सब पर ओ लिखने छथिन, जेना कि सोहर भेल, समधान भेल, इहो सब हुनकर बहुत बहुत नीक छनि ओतऽ। तो अ हिसाब से ओ अगर देखल जाए तो मिथिला के हर हर क्षेत्र में, हर रूप में, हर संस्कृति में, परंपरा में, भक्ति में हुनकर लेखनी मतलब छै है। एहन कोनो जगह नहीं छै जत कि कहल जते कि विद्यापति जी किन अइ में छोड़ देलखिन। तो ओ हिसाब से देखल जाए तो महान भेलखिन। और रहले बात हुनकर अगर देख हुनकर पूरा जीवनी ही एगो स्टोरी, मतलब हर हुनकर जीवनी में हर पॉइंट पर एकटा स्टोरी छन। तो ओहिमे से जे बहुत ही फेमस स्टोरी अगर कहल जाए, बहुत फेमस एगो कथा छन, ओ छै कि जे ओ एहन भक्त भेलखिन, ओ बहुत सामाजिक और बहुत ही पारिवारिक पर्सन सेहो रहथिन, ओहिके संगे ओ बहुत बड़ा भक्त रहथिन, जे कि अपन भक्ति के बेस पर, अपन लेखनी पर ओहन कविता, एहन गीत लिखथिन और एहन गवथिन जैसे प्रसन्न भऽ कऽ भगवान भोलेनाथ स्वयं एलखिन हुनका घर, और कोनो और रूप में नहीं, भगवान के रूप छोड़ कर ओ एकटा मतलब कि काम काज करे वाला नौकर के रूप में एलखिन और हुनका संगे रहलखिन। हुनकर नाम
0: भक्ति के जे छै से पराकाष्ठा छै, जे भक्त के घर में भगवान स्वयं नौकर बनकर रह रहल छथिन, ई पराकाष्ठा छै, ई संसार में कतौ और सुना ले नहीं भेटे छै।
1: बिल्कुल नहीं भेटे छै। और हुनकर नाम पड़लन ओ रखलखिन उगना, और जे कि आइयो उगना महादेव के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस छै ओतय, और सब लोग बहुत मानै छथिन, अखनो सबके मनोकामना पूर्ण होइ छनि, और मंदिर छै अखनो ओतय मधुबनी जिला में। तऽ ई एकटा बहुत बड़ा कथा छनि जे कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ एवे नहीं केलखिन, माता गंगा सेहो लेलखिन हुनका लेल, हुनका लग में। ये सब बहुत महान काज छै।
0: नहीं तो जहाँ उगना कहलिए एहि पर एकटा विद्यापति के गीत अछि अपना संगे, तो हम श्रोतागण सबके सुनवाब चाहब। ई उगना पर जे गीत छै बहुत मधुर गीत छै, अहाँ सब सुनू, आनंद लिया, हम सब फेर वापस अबै छी।

0: इसका बहुत फेमस गीत छे जय में उगना बहन का महादेव विद्यापति के घर में नौकर के काज कलखिन हुनकर सेवा कलखिन हुनकर पत्नी के सेवा कलखिन। तो ममता जी अ विषय में जहाँ तक अहाँ सब बात भर रहा है हमरा पता चलल जे अहाँ सब एक बहुत बढ़िया एक स्किट केने रही के विषय में कुछ बाजे चाहे छे।
1: जी बिल्कुल। तो पिछला साल मिथिला महोत्सव भेल रहे सिडनी में जैमे कि विद्यापति जी के जीवनी पर यह कथा उठाकर एक बहुत ही नीक स्किट कैल गेल रहे जे बहुत नीक लागलन सब गोटा के। और आइयो अखनो होय में जे महादेव के किरदार निभलखिन उनका महादेवे बुलायल जाय छै जे विद्यापति जी के
0: हुनकर नाम महादेव पढ़नाय अपना आप में देखा रहल छै जे कतेक बढ़िया जका ए स्किट के कैल गेले कतेक बढ़िया जका एकरा बनायल गेले कैल गेले जतेक एमे कलाकार सब छलखिन है उनका सबके कतेक डेडिकेशन रहल।
1: सब कलाकार एकदम बहुत परफेक्ट रहथिन सबके जे छै ने हुनकर छवि एकदम ओहने रहन जेहन हेबाक चाही छलन जेहन इमेजिन कऽ सकली कि ओहि काल में केहन रहल हथिन। और बहुत नीक स्किट भेल रहै बहुत इन्जॉय केने रहथिन सब गोटा। इनफैक्ट हमरा जतऽ तक देखायल मोस्टली लोग के आँखि में नोर आबि गेल रहै ओहि टाइम में देख कऽ भाव भी भोर भऽ कऽ सब गोटा कानऽ लगल रहथिन
0: जखन महादेव एलखिन महादेव के नाम सुनि कऽ।
1: हाँ जखन महादेव प्रकट भेलखिन तऽ सब गोटा कानऽ लगलखिन भक्ति में डूबि कऽ। ओ एहन स्किट भेल रहै तऽ कहल जाए एहिबेर फेर सँ मिथिला महोत्सव भऽ रहल छै 17 तारीख के 17 अक्टूबर के। तऽ ओहिमे फेर सँ एकटा अपन परम्परा अपन जे संस्कृति अइ ओहिसँ एकटा आओर स्किट कयल जायत। आओर हम सब गोटा के न्योता दै छी आउ आ सब गोटा मिथिला महोत्सव मे शामिल हो देखू फेर सँ एकटा जीवंत कयल जेतै एकटा कथा के।
0: तऽ श्रोतागण अहाँ सब लेल ई प्रश्न अछि जे एहि बेर मिथिला महोत्सव मे जे स्किट भऽ रहल है ओकर की नाम छै। एहि प्रोग्राम के अहाँ बहुत ध्यान सँ सुनैत रहू उत्तर अहाँ के एहि प्रोग्राम मे भेटत। एहि बेर मिथिला महोत्सव 2026 मे जे प्रोग्राम भऽ रहल छै ओहिमे एकटा जे ड्रामा भऽ रहल छै स्किट भऽ रहल छै ओकर की नाम छै। ठीक छै चलू एहि बातचीत के आगाँ बढ़बै छी। तऽ हमर अगला प्रश्न अछि श्वेता जी सँ। श्वेता जी जैसे विद्यापति के कविता में प्रेम और भक्ति दोनों का समावेश दिखता है तो किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें ये दोनों अलग अलग भावनाओं में विद्यापति इतने सहज क्यों दिखते हैं इतने सहज भाव से उन्होंने दोनों चीज़ों के ऊपर कविताएं कैसे लिख दी हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी भी महसूस होती है। राधा के विरह में इंसानी पीड़ा है तो भक्त के ईश्वर से मिलने की तड़प भी है। भगवान शिव के प्रति उनके भाव में डर नहीं अपनापन दिखता है। वे शिव से ऐसे बात करते हैं जैसे अपने घर के किसी करीबी सदस्य से बात कर रहे हों। विद्यापति के पदों की एक और खूबी है उनके आंखों के सामने चित्र उकेर देना। मौसम हो बादल हवा नदी फूल श्रृंगार और इंतजार कुछ भी हो सब कुछ जैसे हमारे सामने जीवंत हो उठता है। उनकी कविता पढ़ते समय या सुनते समय हम सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं पूरा माहौल महसूस करते हैं। और उनकी भाषा में संगीत अपने आप बहता है शब्दों की लय से ऐसे है कि जैसे पद सहज ही गीत बन जाता है। यही वजह है कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने उन्हें सिर्फ किताबों में नहीं अपनी आवाज़ और यादों में भी संजो कर रखा है।
0: डेफिनेटली दिस इज वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आई थिंक इट टेल्स अस व्हाट समवन फेल्ड इट अलाउज अस टू फील हाउ इट फील्स अबाउट आवर सेल्व्स। तो आपने जो जिस तरह से इसे बताया है ये बहुत ही रोमांचित करने वाली बात है और इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि यदि आज मैं पूछूं कि आज का युवा दिग्भ्रमित है आज के युवा के पास यदि हम बोलें कि भाषा और संस्कृति की बात करें तो युवा को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि विद्यापति जी को लेकर हम किस प्रकार से युवाओं में ये एक एक प्रकार का इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर, तो यदि आप इस पर कुछ भी बोलना चाहें।
2: जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जो आज की जनरेशन है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तीन बातें बहुत ज़रूरी है। पहली, अपनी मातृभाषा में रचना करना कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है, ठीक है। और दूसरी, गहरी बात भी सरल भाषा में कही जा सकती है। और तीसरी, आधुनिक बनने का मतलब ये नहीं कि जड़ों को छोड़ना है। विद्यापति ने परंपरा से जुड़े रचनाओं की नई रचनाएं की, आज के कलाकारों और लेखकों के लिए यह बहुत बड़ी सीख है।
0: क्या बात है, और ये मुझे लग रहा है कि आजकल के युवा इस बात से अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि हमें समझना चाहिए कि हमें अपना, यदि हमने अपना जड़ छोड़ दिया, यदि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, भाषा छोड़ दी, क्योंकि यदि किसी भी सिविलाइजेशन को मिटाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी भाषा को हटा देते हैं, मिटा देते हैं, और फिर वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जितने भी युवा श्रोतागण हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि अपनी भाषा से जुड़े रहें, मैथिली से जुड़ल रहो, मिथिला से जुड़ल रहो, अपन संस्कृति से जुड़ल रहो, क्याकि यह अहाँ के अपन पहचान दैया जे अहाँ के छी, कतौ सँ अबै छी, अहाँ के संस्कृति की अछि। तैं आओ ई बातचीत के हम आगा बढ़ायब आरो, लेकिन आगा बढ़ा से पहिने ममता जी, अहाँ एकटा आप कहलिए जे गंगा के ऊपर में से हो हिनकर किछु रचना छनि, विद्यापति जी के रचना छनि, तऽ गंगा किया तक इम्पोर्टेंट भऽ गेलखिन विद्यापति जी लेल?
1: तो बात ई छै कि जे देखियो, जेना अखन कहलिए कि जे ओ सब मतलब कि हर चीज में छलखिन, भक्ति में हुनकर विशेष रहलनि, ओ भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ा भक्त मानल जाइन हुनका, तो ओहि हिसाब से ओ माता गंगा के मतलब स्तुति करै छलखिन। तऽ जखन उगना कथा ई छै कि जे उगना महादेव जखन एलखिन और हुनका जे प्यास लगलनि, तऽ ओ अपन महादेव जंगल से गुजरत रहथिन और हुनका प्यास लगलनि, तऽ ओ पानि मंगलखिन, तऽ महादेव के नहि दिखेलनि पानि कतौ, तऽ ओ की केलखिन, अपना जटा से गंगा निकालि कऽ, आब गंगा से पानि निकालि कऽ और हुनका दऽ देलखिन पीबऽ लेल, तऽ ओ पिलखिन आ ओ बुझि गेलखिन कि जे ई नॉर्मल पानि नहि छै, ई तऽ गंगा माता छथि स्वयं, तऽ ताहिसँ ओ चिन्हलखिन कि जे हमरा सङ्गे जे छथि ओ कोनो हमर उगना नौकर नहि अइ, हमर काज करऽवला नहि अइ, ई तऽ स्वयं महादेव छथिन और महादेव हुनका दर्शन देलखिन। तऽ ओ टाइम रहै जे तऽ जहिया हुनका भगवान के मतलब माता गंगा के मतलब की कहू एगो जुड़ाव महसूस भेलनि, तऽ तखन कहल ई जाइ छै कि जे हुनकर जीवन काल मे जे जौनपुर जे छै मतलब ओतऽ के सुल्तान जखन मिथिला पर अथी केलकै, अटैक केलकै, तखन ओ की केलखिन, राज दरबार से हुनकर कनेक्शन रहनि ओहि टाइम मे, शिव सिंह ककर राजा रहथिन हुनकर राज दरबार से कनेक्शन रहनि, तऽ हुनका सङ्गे ओ गेलखिन नेपाल मे और नेपाल मे शरण लेलखिन, तऽ हुनकर जीवन के जे अंतिम टाइम रहै ओ नेपाल में बीतैत रहै।
0: अच्छा।
1: तो ओहि टाइम में की भेलै कि हुनका बहुत तीव्र इच्छा भेलनि कि जे हम गंगा माता के शरण में नहीं छी, अखन लास्ट टाइम में कहल जाइ छै अपन परंपरा में कि जे गंगा जल और गंगा माता से में ही मुक्ति भेटै छै, तो हुनका बहुत ई बात के लगलनि कि जे आइ हम अपन गंगा माता के मतलब कि शरण में रहितौं तो हमरा मोक्ष भेटैत, आइ हम पाप छी, तऽ ओ कहलखिन अपन मुक्ति के लेल ओ माता के आराधना केलखिन और बहुत नीक पद लिखलखिन माता के भक्ति मे, और एहनो भेलै कि जखन ओ लिखलखिन ओ पद और गेलखिन, तऽ माता स्वयं सबके छोड़ि कऽ एक चमत्कारिक रूप मे ओतऽ एकटा गंगा के धारा बहलनि, जाहिसँ हुनकर अंतिम समय मे हुनका मुक्ति भेटलनि। तऽ ई हुनकर माता गंगा के एगो विशेष भक्ति कहल जाइ छै, जे कि बहुत ज्यादा हमरा बुझाया जे लोक मतलब कि बहुत फेमस नहि छै, लेकिन लास्ट के समय मे ओ माता गंगा के भक्त बनि गेलै।
0: विद्यापति के अंतिम समय मे जे गंगा माता के लेल हुनकर प्रेम छलनि हँ और ओहिठाम रहलखिन, ओ ओहिठाम रहलखिन देह त्याग से पहिने तक, आओ ओ गीत सुनै छी, हालांकि गाना बहुत ई जे गीत छै से बहुत ज्यादा फेमस नहि छै, लेकिन केवल हम अहाँ सबके लऽ कऽ अयलहुँ हैं, अहाँ सबके लेल लऽ कऽ अयलहुँ हैं, एहि गानाके सुनैत जाउ और रोमांच के अनुभव करियौ जे जे कवि छथिन, जे विद्यापति छथिन, कोन प्रकार सौ हुनकर भक्ति गंगा के लेल छलनि हैं जे गंगा के दिशा बदलि देलखिन। आओ सुनै छी।

तो ये एकदम सटीक गीत विद्यापति के माता गंगा के स्तुति में अहाँ के सुनकर रोमांच भऽ जायत, जेना कि हमरा भऽ रहल अछि, बहुत भावुक भऽ गेल छी गाना सुनकर। तऽ अपने सब जुड़ल रहू और ऐसे पहिने कि आगाँ बढ़ी, याद दिया दी 17th October to 19th October ज्वाइन अस ऑन मिथिला महोत्सव, अ फेस्टिवल ऑफ ट्रेडिशन लैंग्वेज कल्चर। You will get everything in this 3-day extravaganza. Please come join us and visit us on our website www.mithilaculturalsociety.au. You can call us your queries on 0426-395-298. अहाँ सब अपन क्वेरी भेज सकै छी 0426-395-298 पर। अधिक जानकारी के लेल हमर वेबसाइट विजिट करू www.mithilaculturalsociety.au। चलू आओ आई बातचीत के सिलसिला के आगा बढ़बे छी। तो विद्यापति के गीत के बाद मिथिला में, क्योंकि हमर सबके 3 सप्ताह के जर्नी चला जतय देखलिए हम सब राजा जनक से शुरू भले और इवन राजा उनको सब पहिने राजा निमि से शुरू भ के विद्यापति के, ओके बाद महाराज दरभंगा के समय अबे छन जे महाराज दरभंगा के

0: अगला 400 साल तक दरभंगा महाराज के शासन चलित रहले। एक दिन दरभंगा महाराज के ऊपर हम सब अलग से प्रोग्राम करब। आई विशेष जानकारी है हुनका सबके लेल जे टूरिज्म में जे यात्रा में काफ़ी इंटरेस्ट रखे छथि हुनका सबके लेल मिथिला में की है। तो श्वेता जी पर्सनली ई काफ़ी यात्रा में यात्रा करते रहे छथि और काफ़ी इंटरेस्ट छन इनका अलग अलग नया नया जगह सबके जाना में। तो श्वेता जी यदि मैं आपसे पूछूं कि जो ये मिथिला में जो प्लेसेस हैं उसमें आपको कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो आपको जो श्रोतागण को जाना चाहिए, श्रोताओं को लगे श्रोताओं को एक बार अवश्य देखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, अगर क्वांटिफाई किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि 5 जगह देख लो या फिर 4 जगह देख लो, 10 जगह देख लो। मिथिला में हर एक जगह इतनी सुंदर है कि आप जाओगे तो आपका मन करेगा कि आप हर चीज़ देख लो।
0: इस बात से मुझे मिथिला में एक कहावत है, पग पग पोखर माछ मकान, मतलब मिथिला का जो हर एक स्टेप है जहाँ पर आपको माछ पाग और मखान और पोखर ये देखने को मिलते हैं, हर चीज़ रमणीय है, हर चीज़ देखने लायक है। जी जी बताएं।
1: बिल्कुल सही बोला आपने। तो मिथिला में जानकी मंदिर और विवाह मंडप, ये दोनों जनकपुर के अंदर आता है, नेपाल के जनकपुर में स्थित ये भव्य मंदिर है, जानकी माता का मंदिर, और ये मंदिर सीता माता को समर्पित है। और दूसरा जो विवाह मंडप है, इसकी मान्यता है कि यह राम और जानकी के विवाह की स्मृति से जुड़ा हुआ है, और विवाह पंचमी के भव्य उत्सव का केंद्र है ये। तो ये दो मंदिर, विवाह मंडप और जानकी मंदिर, तो मस्ट विजिट प्लेस है मेरे हिसाब से। मतलब आप यह जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे जाते ही आपको ऐसा फील होगा कि आप ना बिल्कुल हिस्ट्री में चले गए और उन चीज़ें जो हुई हैं उसको फील कर रहे हो वहाँ पे। और उसके अलावा आप वहाँ पे घूम सकते हैं, धनुष धाम है जो कि शिव धनुष और रामायण परंपरा से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आपको मिथिला में धार्मिक स्थल बहुत सारी मिलेंगी। और मेरे हिसाब से वहाँ पे पुनौरा धाम है सीतामढ़ी के पास, इसे माता सीता की जन्मस्थली के रूप में पूजा जाता है। और मिथिला में जानकी जी सिर्फ देवी नहीं अपन बेटी अच्छी।
0: तो जब माता सीता ही मिथिला में हैं तब तो उनका मिथिला का हर एक कण कण जो है, हर एक स्टेप जो है, हर एक पग पग जो है वो पावन है, पवित्र है। और जैसा कि आपने बताया कि जनकपुर में उनका भव्य मंदिर है, सीता माता का जन्म ऐसी मान्यता है कि सीतामढ़ी में हुआ, परंतु राजा जनक जनकपुर के थे
1: जी,
0: तो इसलिए वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ होगा। तो वहाँ पर धनुष धाम जो जैसा कि आपने बताया, फिर अपने पुनौरा धाम बताया सीतामढ़ी में, तो ये सारी चीज़ें माता सीता से संबंधित है और जो श्रोतागण हैं उन्हें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हम राम के विषय में तो जानते हैं, राम श्री राम अयोध्या से थे और श्री राम के पद चिन्ह कहाँ कहाँ पड़े, इन सब के विषय में इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। परंतु राम जिसके बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो माता सीता वो कहाँ से थी, उनके चरण कहाँ कहाँ पड़े, वो कैसा जगह होगा अद्भुत पवित्र, इसके विषय में बहुत कम लोगों ने लिखा है। आप स्वयं जाकर मिथिला में इन सारी चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। मिथिला जाएं, जनकपुर से लेकर सीतामढ़ी तक और फिर अहिल्या स्थान और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसके विषय में और हम चर्चा करेंगे। तो ममता जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अलावा और क्या आपको लगता है कि और कौन कौन से जगह हैं जहां पर श्रोतागण को जाना चाहिए?
2: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा अखन अहाँ कह लिया जे मिथिला पग पग माछ पोखर माछ मखान, तो ओ पग पग पर ही अलग अलग स्थान छे अगर देखल जाए तो, मतलब इतने ज़्यादा छै कि जे ओकरा गिनानाइ मतलब मुश्किल छै, लेकिन तैयो हम कोशिश करब कि किछ हमरा जे जानकारी है वो हम अहाँके कह सकी। तो ओहिमे से जेना श्वेता जी कहलखिन है सीता माता से रिलेटेड, तो आब हम आगा बढ़ कर कहै छी भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड बहुत सारा स्थान छै जाहिमे।
0: अच्छा।

0: और जाहिमे से अबै छै एकटा कपिलेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, और एहन एहन एहन और भी बहुत सारा मंदिर छै, जाहिमे से विशेषता ई छै कि कपिलेश्वर स्थान के मानल जाइ छै कि जखन भगवान रामचंद्र जी जाइत रहथिन जमा अथी में सीता स्वयंवर के लेल, तै टाइम में ओ ओतय रुकि कऽ पूजा केने रहथिन जखन माता अहिल्या के उद्धार होबा के बाद, तऽ जखन माता अहिल्या के उद्धार भऽ गेलनि हुनका पग के टच हुअ सँ, तऽ ताहिके बाद ओ भगवान भोलेनाथ के पूजा केलखिन जे स्थान के कपिलेश्वर कहल जाइ छै, ओ छै बिस्फी के पास मे, 0 माइल बिस्फी के पास, आ ओतै विद्यापति जी के जन्म सेहो भेल रहनि।
1: की बात छै, बहुत
0: बढ़िया। तऽ ओ विद्यापति जी के भी मतलब पूजा के स्थान रहल छै, तऽ ई बहुत नीक छै, जाउ ओतऽ, बहुत अहाँ के फील होयत कि ओतऽ भोलेनाथ बैसल छथिन। हम जखन जाइ छी मिथिला, एक बेर जरूर ओतऽ विजिट करै छी।
1: जहन श्री रामे ओतऽ जाकऽ बैसल छथिन तऽ भोलेनाथ तऽ ओतऽ रहबे करथिन,
0: हुनकर प्रिय देव, हुनकर
1: दुनू एक दोसर के प्रिय देवता छथिन
0: छथिन। और ओहि के अलावा भेल, माता के बात करू तऽ अहिल्या स्थान भेल जतऽ कालिदास, जे अपन सबके स्किट होवय वाला छै एहि बेर मिथिला महोत्सव में, कालिदास ओ ओतऽ हुनका माता काली दर्शन देलखिन, जे स्थान के अखन माता उच्चैठ मानल जाइ छै, भगवती उच्चैठ के नाम से ओ ओतऽ छथिन। ओतऽ जाकऽ अहाँ दर्शन कऽ सकलहुँ हँ। ओतऽ के विशेषता ई छै कि ओतऽ बलि चढ़ै छै, लेकिन आइ तक कहियो ओतऽ एकटा ओहि मन्दिर परिसरमे एकटा मक्खी नहि देखल गेलैए, और ई ओतऽ के बहुत बड़ा विशेषता छै, मानल जाइ छै कि माता के कृपा छनि और ओ हुनकर वरदान छनि। ओहि के अलावा कहब तऽ तेसर कहब तऽ श्यामा मन्दिर छै, जे हमर बहुत क्लोज अइ, मतलब हार्ट के क्लोज अइ, कियाकि हम ओतै खेल के मतलब पलल बढ़ल का कहि सकलहुँ हँ ओहि मन्दिर परिसर में। ओ हमर हर चीज के स्थान होइ छलै, चाहे ओ एग्जाम हुए, चाहे ओ कोनो दुख हुए, सुख हुए, जे हुए, हमर हम ओतै जाइ छलहुँ, ओहि माँ के शरण में रहलहुँ हँ, ओ हमर माँ छथि। और हम
1: श्यामा मन्दिर के विषय में इहो जे सुनने छी हम, किंवदंती जे किंवदंती छै या सच्चाई छै, वहाँ कहब जे महाराज दरभंगा ओहि सब जगह पर तंत्र साधना करै छलखिन हैं राति में, और माता के प्रसन्न क क साक्षात ओतऽ अवतरित केने छथिन।
0: एकदम सही छै, हाँ, जे हम सुनने छी हमेशा से, जे हमर नानी दादी हमेशा बतेने छथिन जे ओतऽ के घर घर में छनि, जे सत्यता कहल जाइ छनि ओ सत्य छै ओतऽ, जे कि भगवान मतलब राजा दरभंगा महाराज जखन बहुत बड़ा भक्त रहथिन माता के, और ओ हमेशा साधना करै छलखिन हँ, तऽ ओ तांत्रिक साधना सेहो करै छलखिन, तऽ ओ की केलखिन कि मतलब एते साधना केलखिन ओतऽ कि माता अवतरित भेलखिन, ओ हुनका दर्शन देलखिन,
1: असाधारण बात छै।
0: हाँ, और वो छै अखन काली माता जे अखन ओतऽ छथिन, ओहे प्रतिमा जे हुनका देखेलनि, ओहि के ओ प्रतिरूप देलखिन मूर्तिकार के, अखन मूर्ति बनल छै ओतऽ, अहाँ देखबै बहुत भव्य मूर्ति छै, अहाँ के साक्षात दर्शन होयत ओतऽ माता काली के। तऽ श्यामा मन्दिर और ओकर साथ साथ में बहुत सारा मन्दिर और छै ओहि परिसर में, मनोकामना मंदिर सेहो छै ओहि परिसर में, जे बजरंगबली के डेडिकेटेड छै कहल जाइ छै, जे ओतऽ जे मांगबै लेकिन लिखऽ पड़त, तऽ जे लिख देबै मंदिर पर से पूरा भऽ जाइ छै, तऽ अहाँ जायब तऽ ओहि मंदिर के कोनो एगो कोना नहि बाँचल छै जतऽ लिखल नहि हुआ।
1: तऽ कतेक जगह के हम सब नाम लेलहुँ, श्रोतागण अपने सब सुनि रहल छी, तऽ शुरू केलहुँ हम सब जनकपुर सँ, धनुषधाम, पुनौरा धाम, अहिल्या स्थान, कपिलेश्वर स्थान, और अहाँ कहलिए श्यामा माई मंदिर, मनोकामना मंदिर, कुशेश्वर स्थान अहाँ सेहो कहने छलिए। तऽ अहाँ सब सुनि रहल छी कि लिस्ट कतेक नंबर भेल जा रहल अइ, ई लिस्ट आधा नहि छै, एखन आर एहिमे जुड़ल जेतै, ठीक छै। एहिसँ पहिने कि आगाँ बढ़ी, अहाँ सबके याद दिया दी जे एकटा क्विज चलि रहल अछि सङ्गे सङ्गे, कि एहि बेर मिथिला में जे स्किट भऽ रहल है ओकर की नाम छै। उत्तर तऽ अहाँ सबके भेट गेल होयत, नहि भेटल है तऽ बनल रहू, और जे विजेता छथि हुनका दूटा डांडिया के टिकट भेटतनि 18 अक्टूबर साँझ 5 बजे से डांडिया होवला छै, और बेस्ट डीजे अहाँ के इंतजार कर रहल छथि। अहाँ सब अबियौ, एहिमे पार्टिसिपेट करियौ, एहिमे अनुभव करियौ। परंतु इससे पहले 17 अक्टूबर का मिथिला महोत्सव है, माँ जगदम्बा के पूजा छन, और बहुत सारा प्रोग्राम छे जो हो वाला छे, सबसे संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न हुए तो हमारे को वेबसाइट विजिट करूँ www.mithilaculturalsociety.au और फोन नंबर है 0426-395-298। ठीक है, तो एक गाना सुनल जाए जे अहाँ के हिनकर हिनकर डेडिकेटेड छन विद्यापति जी के, क्या क्या प्रोग्राम के थीम छलै विद्यापति जी और मिथिला के स्थान, तो आओ सुनै छी।

0: ई गीत अहाँ सबके केहन लागल? ई छलनि हँ कृष्ण और राधा के जे प्रेम छलनि हँ ओहिके ऊपरमे विद्यापति के बहुत सुंदर प्रस्तुति, एतेक सुंदर शब्द चित्र जे छै से एहि विश्वमे संभव नहि छै। तऽ हमसब बात कऽ रहल छलहुँ हँ मिथिला के किछु एहन जगह जे श्रोतागण जाय चाहब, तऽ हमसब बात केलहुँ जनकपुर सीतामढ़ीमे पुनौरा धाम, जनकपुरमे धनुष धाम, जनकपुरमे माता सीता मंदिर, फेर बात केलहुँ कपिलेश्वर स्थान, फेर विद्यापति के जन्मस्थान बिस्फी, फेर बात केलहुँ श्यामा माई के मंदिर, मनोकामना मंदिर और कपिलेश्वर स्थान, अहिल्या स्थान जतय श्री राम के चरण पड़ल छनि। तऽ एहि सबसँ हमसब बात केलहुँ, आउ आगाँ बढ़ै छी। एहिके बाद एके उपरान्त श्वेता जी, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, एक ऐसी यूनिक जगह है वहाँ पे जिसकी परंपरा आज भी जारी है, सौराज सबागाची।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये जगह का नाम है। तो आज की डेट में मैट्रिमोनियल एप्स होती है जहाँ पे लोग लड़कियों को या फिर लड़कों को पसंद करते हैं और इस तरीके से शादियाँ होती है। मैट्रिमोनियल ऐप आने से बहुत पहले मिथिला में विवाह के रिश्ते तय करने की एक अनोखी सार्वजनिक परंपरा थी। सौराठ उसी सामाजिक इतिहास के लिए जाना जाता है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, जहाँ वो परंपरा, अच्छी बात ये है कि ये परंपरा आज भी जारी है। तो वहाँ पे ये बहुत फेमस प्लेस है और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा देखने के लिए, क्योंकि ये परंपरा आज भी यहाँ पे जारी है।
0: तो ये तो एक कितना ही डेवलप्ड माइंड का एक एग्जांपल है कि क्योंकि लड़कियों के लिए जब वर्क होया जाता था तो उसमें पूरा परिवार या पूरा जो समाज है उसमें इन्वॉल्व रहता था, और इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था की गई जहां पर बहुत सारे जो वर हैं, जो दूल्हे हैं, वो आएँ और लड़की वाले जाएँ वहाँ पर और उसमें से चयन करें। बहुत ही सुंदर परंपरा थी और इस स्थान को अवश्य देखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: ममता जी, और कुछ स्थान आपको जो याद हो?
2: अगर कोई विजिट करना चाहते हैं तो उनका सबके लिए, हाँ, मतलब एक बहुत ही सहूलियत है अगर माइलिया के टाइम कम है और अगर तैयो वहाँ जाकर देखा ला चाहे छी, तो ओमे जे श्यामा मंदिर के अखन बात चल रहा छल, तो ओकर नजदीकेमे बहुत सारा एहन जगह छै जतय जाकर देख कर बहुत नीको लागत, संस्कृति के भी पता चलत, हिस्ट्री के भी, और संगे अहाँ के मतलब ओतय के मिथिला के जे कल्चर छै ओकर भव्यता के भी पता चलत। ओहिमे से एकटा नाम अबै छै नौलखा।
0: अच्छा।
2: हाँ,
0: विशेषता छै?
2: विशेषता छै कि ई जे नाम छै नौलखा, ओ छै एगो महल के नाम, जे दरभंगा महाराज के घर जे छलनि हुनकर मेन प्लेस रेजिडेंस, ओकर नाम छनि, क्याकि ओहि जमानामे जखन कई शताब्दी पहिले ओ बनल रहै तऽ 9 लाख रुपया लागल रहै ओहिमे, ताहिके लेल ओकरा नौलखा कहल जाइ छै।
0: बहुत बढ़िया।
2: और ओ की केलखिन, दरभंगा महाराज दानमे देलखिन सरकार के, और ओतय अखन चलि रहल छै संस्कृत यूनिवर्सिटी जतय संस्कृत पढ़ायल जाइ छै, संस्कृत के संरक्षण चलि रहल छै। लेकिन ओ बहुत नीक छै, देखऽ लायक जगह छै, जाओ और देखू। दोसर जगह अबै छै एकटा आनंद पैलेस, जेकि ओ छनि हुनकर भाय, ओ दरभंगा महाराज।
0: रोकऽ चाहब किएकि समय समाप्त भऽ रहल अछि,
2: जरूर
0: चर्चा के हमसब फेर सँ जारी रखबै, तऽ किएकि अब समाप्त के तरफ हमसब छी, तऽ अहाँ सबके याद दिया दी जे एहि साल जे स्किट भऽ रहल है ओकर की नाम छै, ओहिके बहुत सारा प्रविष्टि भेटल है, जे विजेता रहता हुनका सँ संपर्क करतै टीम, और एहि साल के जे स्किट भऽ रहल अछि, खुशी जी अहाँ एकर उत्तर देबऽ चाहबै जे साल के स्किट छै ओकर की नाम छै?
3: तऽ एहि साल के जे स्किट छै हुनकर नाम छै कालिदास, और विद्योत्तमा के स्किट भऽ रहल छै।
0: तो मतलब कालिदास के जीवन से संबंधित जे कियो जाना चाहे छथिन अवश्य आओ देखियो मिथिला महोत्सव में। कालिदास एक साधारण,
3: हम जे कियो नहीं कहबन, हम कहबन प्लीज आओ, सब गोटे
0: आओ,
3: क्योंकि हमरा ई बुझाइए जे जते बेर हम पॉडकास्ट या देखै छियै तऽ हमरा आर किछु जानय लेल भेटैए मिथिला लेल, हालाँकि मिथिलेसँ छी, लेकिन हमरा बुझाइए जे तते सारा नॉलेज छै आर बहुत सारा चीज हमरा सबके नहि पता छै। तऽ स्पेशली जे यंग पेरेंट्स छथिन या फिर जिनकर बच्चा सब छनि हमरा सब जगह नम्हर, तऽ हमरा बुझाइए हुनका सबके पता रहबाक चाही। आओ
0: अहाँ सब एकटा बहुत अद्भुत प्रोग्राम कऽ रहल छी नेक्स्ट जेनरेशन के लेल, और हम सब गोटे के इनकरेज करब जे कृपा के कहबे जाय जाओ एहि प्रोग्राम में शामिल हो, देखियो
3: हकार दै छी हम सब मिथिला में हकार देल जाय छै, तऽ हकार दऽ रहल छी।
0: अहाँ सबके
3: आओ सब गोटे
0: आमंत्रण अछि, निमंत्रण अछि, भोजन विभाग के व्यवस्था सेहो रहतै, तभियो एकरा आनंद लियो। तऽ आब हम समाप्ति के तरफ जा रहल छी, तऽ विद्यापति जे छथि से विद्यापति के बात भेलै और मिथिला के जगह जगह के बात भेलै, तऽ अहाँ सबके हमसब छोड़ने जा रहल छी एकटा विद्यापति के बहुत सुंदर गीत के संगे। आनंद लिया और फिर से भेंट हेतै अगला रविवार का सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण सब।

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी 20 सितंबर 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा कदम. HAL ने वायुसेना को सौंपे तेजस और HTT-40 अंकुर ट्रेनर विमान. ग्लोबल चिप हब बनने की तैयारी में भारत. सेमिकॉन 2 से देशी स्टार्टअप्स को मिलेगा नया मुकाम. राजस्थान में ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रणाली का लाइव टेस्ट. भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की फुल तैयारी. सिर्फ शराबबंदी से नहीं रुक सकती जहरीली शराब की घटनाएं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों सरकारों को सुझाव कई उपाय. आर्यवीर अन्वय ने दोहराया सहवाग द्रविड़ जैसा प्रदर्शन. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त. अब सुनिए समाचार विस्तार से. सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को 2 सीट वाला LCA तेजस प्रशिक्षक विमान और HTT-40 बुनियादी प्रशिक्षक विमान सौंपे. साथ ही पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे गए. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि 1.27 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन वाली सेमीकंडक्टर योजना सेमिकॉन 2.0 से करीब 200 चिप डिज़ाइन कंपनियों के उभर कर सामने आने की उम्मीद है. उन्होंने इसे देश के लिए गेम चेंजर बताया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की डिज़ाइन क्षमता अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विस्तारित हो रही है. राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बार ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का लाइव परीक्षण हुआ. भारतीय वायुसेना का पहला ड्रोनाथन 2026 जैसलमेर स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ. 14 से 16 सितंबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय ड्रोनाथन का मकसद देश की रक्षा तकनीक को मजबूत करना और भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से तैयार करना है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात की दशकों पुरानी शराबबंदी की व्यवस्था मेथनॉल मिली जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है. ऐसी कम से कम 10 बड़ी घटनाओं में 600 से अधिक मौतें हुई हैं. ये घटनाएं बताती हैं कि सिर्फ शराबबंदी से जहरीली शराब की घटनाएँ नहीं रुक सकती. शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी घटनाओं रोकने के लिए कई उपाय भी सुझाए. सहवाग ने पहले ओवर में बाउंड्री के साथ अपनी पारी शुरू की और मुकाबले में विकेटकीपिंग की भूमिका भी निभा रहे द्रविड़ ने निचले क्रम में मैच जिताऊ पारी खेली. यह 2002 के एक मैच की कहानी नहीं है, जब भारतीय टीम के 2 सितारे वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने टीम को इस तरह से जिताया था, बल्कि 2026 में भारतीय अंडर 19 टीम की दास्तां है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब वीरेंद्र सहवाग की भूमिका में उनके बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ की भूमिका में उनके बेटे अनयव द्रविड़ थे. वीरेंद्र सहवाग इस मुकाबले में बेटे को खेलते हुए देख भी रहे थे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,41,710 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95 रुपये 97 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 68 रुपये 32 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
3: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज आपके साथ हैं स्टूडियो में ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम जो ला रहे हैं वो उसके हाइलाइट्स हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे पराग श्रीवास्तव से, जो धार्मिक चर्चा करेंगे आपको, और फिर आपको मिलवाएंगे नंदन मुखारिया से, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग आपको महेश भट्ट जी मूवीज़ के सॉन्ग्स जो है उसके लिए सेलिब्रेशन, उनके बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करेंगे, और फिर एक पहेली आपको हम बताएंगे, और इसमें 2 टिकट मिलेगा, ड्रामा के टिकट मिलेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने के पहले ऋचा जी से आज का विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपको पता ही है कि गणेश पूजा हर तरफ मनाई जा रही है, और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज हम एक संकल्प लेते हैं गणेश जी का ही, कि पहले गणेश जी को प्रणाम करें फिर हर काम का शुभारंभ करें, क्योंकि जहां बुद्धि विवेक और सकारात्मक सोच होती है वहां विघ्नों के लिए जगह कम पड़ जाती है। गणपति बप्पा मोरिया।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश. सो श्रोताओं, आज हम एक पहेली करेंगे और आपका इस पहेली के टिकट, दो टिकट मिलेंगे आपको. दसों रंग नोएडा में हो रहा है ड्रामा, और उसके बारे में हम आपको और डिटेल्स बताएंगे. लेकिन पहले मैं आपको पहेली के बारे में बता देता हूँ, तो आपको पता रहे कि हमको क्या उत्तर देना है. तो आज की पहेली है, गणेश जी के पसंद की मिठाई कौन सी है. तो ये पहेली है. और
2: ये तो बड़ा सरल सवाल आपने पूछ लिया सुनील जी, क्योंकि इतने बढ़िया हम शो का टिकट दे रहे हैं, उस हिसाब से बहुत सरल पहेली है. बट चलिए, तो सभी श्रोता मुझे, मेरे ख्याल से इसका आंसर दे सकते
1: exactly.
2: हैं.
1: तो अच्छा है ना कि हमारे पास बहुत सारे उत्तर आएंगे, सही उत्तर आएंगे, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल होगा लॉटरी से निकालने के लिए किसको हम दो टिकट दें
2: जी.
1: तो और ये इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं दर्पण फोरम का, तो आप उसमें उत्तर दे सकते हैं. और आपके पास अगर आप व्हाट्सएप फोरम ग्रुप में नहीं हैं, तो आप हमको टेक्स्ट भेज सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 04684671 96. तो आज जो है, आप रिचा आगे का प्रोग्राम आपको बताएगी.
2: मैं ये कहने जा रही थी सुनील जी कि आंसर ऑलरेडी आना शुरू हो गया है. लोग उत्तर दे रहे हैं क्योंकि इतना सरल सवाल आपने पूछा. लेकिन बनता है ये सवाल सुनील जी, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है और हर जगह. पहले तो मुझे भारत में इतनी जानकारी नहीं थी गणेश उत्सव की, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और गणेश पूजा हम रोज़ करते हैं. हमारे लिए कुछ एक ख़ास महीने या कुछ हफ्ते नहीं होते हैं गणेश पूजा के लिए. हमारे घर की हर पूजा का ही शुभारंभ गणेश पूजा से होता है. तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि गणेश चतुर्थी की जो है 10 दिन तक पूजा चलती है. और अब मैं सिडनी में देखती हूँ, घरों घर जो है गणेश पूजा होती है, उत्सव मनाया जाता है मंदिरों में और पंडालों में. तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है.
1: हाँ,
2: उसी को सेलिब्रेट करते हुए,
1: मतलब उत्तर तो आसान है और लेकिन प्राइज बहुत अच्छा है. तो प्राइस जो है वो है 100 रंग रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ज्योत्सना ज्योति. और ये होगा नोएडा में, द प्ले हाउस नोएडा, 215 एंजेक परेड कैंसिंगटन. और ये होगा 26 सितंबर सैटरडे को 2 से 6 बजे तक. सो आफ्टरनून में 2 बजे से 6 बजे तक.

0: श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने आपको शुरू में बताया था कि आज हमारे दो अतिथि हैं। पहले अतिथि हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। उनका नाम है श्री पराग श्रीवास्तव जी। आपको बता दें कि पराग जी जो हैं बहुत ही धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पराग जी भारत धर्म एकेडमी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। तो धार्मिक चर्चा होगी, और इतने अच्छे मंथ में धार्मिक चर्चा करना तो बनता है। तो पराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण स्टूडियो में, और नमस्कार, धन्यवाद आने के लिए।
1: धन्यवाद ऋचा जी एंड सुनील जी। होम गणेशाय नमः, जय माँ काली एंड जय श्री चित्रगुप्ताय नमः।
0: बहुत अच्छी बात, शुरुआत में आपने इतना बढ़िया जय

0: कारण लगाया। तो सबसे पहले श्रोताओं को आपसे मिलाते हैं और आप अपने बारे में बताइए कि जो है आप भारत में कहाँ से हैं, कितने समय से आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, और हाँ थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, तो मेरा नाम पराग श्रीवास्तव है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैं 2005 से लेकर 2017 तक जो है दुबई में रहा। फिर दुबई से 2018 में माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न बना हूँ। और मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ और मेरे जो कुलदेवता हैं वो श्री चित्रगुप्त भगवान हैं, और मेरी जो कुलदेवी हैं वो जो हैं हमारी शिला माता देवी हैं आमेर की, और जो मेरी इष्ट देवी हैं वो श्री जय माता काली हैं।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात आपने बताई। तो पराग जी, कैसे आप शुरू से ही आपका ये इंटरेस्ट था धर्म में, या जो है बाद में जुड़ाव हुआ आपका, धार्मिक रुझान कब से हुआ?
1: जी, तो मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में, अपनी
0: जी
1: जीवनी के बारे में थोड़ा सा आप सब लोगों को बताना चाहूँगा।
0: जी
1: तो ये बात है 2005 की, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी और मैं जब पुणे के अंदर गया तो मेरा जो बहुत ज़्यादा झुकाव है तो वो शनिदेव भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ मेरा एक्चुअली।
0: जी
1: और मैं शनि भगवान जी की जो है वो पूजा करने लगा रेगुलरली बेसिकली।
0: तो ऐसे
1: और
0: अचानक ही, या कोई आपका स्वप्न आया, या
1: नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने अर्लियर कैरियर एज में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप हमेशा अपने भगवान के सामने थोड़ा हाथ फैलाते हैं। तो
0: जी जी
1: बाई
0: जी
1: चांस ही जो पुणे में एक बहुत ही बढ़िया मंदिर था शनिदेव जी का, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर प्रार्थना करना स्टार्ट करी हर शनिवार को, और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो पूर्ति होने लगी मेरी। तो मेरे भगवान के प्रति और भी, शनिदेव भगवान के प्रति मेरी और भी आस्था बन गई। और फास्ट फॉरवर्ड उसके बाद में जो है मेरी 2011 में शादी हुई, मेरे को बहुत ही अच्छी धर्म पत्नी मिली।
0: अच्छा
1: और 2013 के अंदर मेरे पुत्र का, पहले पुत्र का जन्म हुआ, क्योंकि मैं भगवान शनिदेव की पूजा कर रहा था, काफ़ी करता था, हर
0: जी
1: सैटरडे को वीकली पूजा करता था, तो मैंने अपने पुत्र का नाम भी उनके नाम पर ही रखा, शनै, जो होते हैं पावर
0: अच्छा
1: ऑफ लॉर्ड शनि।
0: अच्छा
1: और उसके बाद 2017 में मेरा दूसरा पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम हमने इवान रखा। और उसके बाद 2018 में है, 18 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ गए एक्चुअली।
0: अच्छा
1: और मेरी जो है पूजा रेगुलरली जो है चालू ही रही, हर वीकेंड पे मैं पूजा करता था। लेकिन कुछ 2024 के अंदर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में कि अचानक है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है सुनने लगा एक्चुअली, मेरे को उसमें
0: अच्छा
1: बहुत ही ज़्यादा खिंचाव
0: ऐसे ही अचानक
1: जी अचानक अचानक हुआ ही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब दिन रात है ना उस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम को सुनने लगा। तो उसने मेरे को कुछ एनर्जी
0: अच्छा
1: ने ना मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट किया एक्चुअली।
0: जी
1: और उसके बाद में मुझे पता नहीं क्या ही हुआ, लेकिन लेकिन जो मुझे पता है कि जो मुझे धीरे धीरे बाद में चीज़ समझ में आई जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो अगर आपने सुना हो दश महाविद्या जो हमारी हैं, तो दश महाविद्या के बारे में जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं कि ये माँ माँ और जो पुत्र के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है एक्चुअली, राइट।
0: जी
1: तो जैसे जैसे ही यदि आप संकट में हैं, जैसे यदि आपका पुत्र संकट में है, या आप माँ तुरंत आपको बचाने आ जाती है एक्चुअली, राइट। तो जो माँ काली हैं, जो पहली दश महाविद्या हैं, वो संकट हरने वाली माँ हैं।
0: जी
1: और इसी तरह जो माँ तारा हैं दूसरे नंबर पे, वो मार्गदर्शन देने वाली माँ हैं, ठीक है।
0: अच्छा
1: इसी तरह हमारे जो जो तीसरे नंबर पे हैं षोडशी माँ, जैसे त्रिपुर सुंदरी और श्रीविद्या भी बोलते हैं, फिर भुवनेश्वरी माँ, त्रिपुर भैरवरी माँ, चिन्मस्तमा माँ, धूमावती माँ, बगुलामुखी माँ, मातंगी माँ, कमला माँ। तो ये एक तरीके से पुत्र जो जब जब आपके ऊपर जो जो माँ का रोल होता है,
0: जी
1: आपको
0: जी
1: मार्गदर्शन देने का, आपको प्रेम देने का, आपका पालन करने का, आपको अनुशासन सिखाने का, आपका अहंकार तोड़ने का, कई बार आप हमारे में भी अहंकार हो जाता है तो, और आपको कई बार दुख होता है दुख में संभालने के लिए, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जितनी भी दश महाविद्याएं हैं वो हर एक एक प्लैनेट को रूल करती हैं।
0: अच्छा,
1: तो
0: तो
1: शनि
0: यहाँ
1: को,
0: मैं थोड़ा टोकूंगी पराग
1: जी
0: जी,
1: जी
0: कि जो हम नवरात्रि में माता के 9 रूप को देखते हैं और उनको समझते हैं, तो क्या ये जो दश विद्या आपने बताई है उनसे अलग है?
1: जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे नवरात्र में हम जो देवियों की पूजा करते हैं, जैसे शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा हैं, कुष्मांडा हैं, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, सिद्धिदात्री हैं बेसिकली, और महागौरी हैं, राइट। तो ये हम लोग नव दुर्गाओं की पूजा करते हैं। तो ये माँ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेज हैं एक्चुअली, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। आई डोंट नो आप सब लोगों को ये पता है कि नहीं पता है कि साल के अंदर चार नवरात्रि आती हैं, ठीक है। दो प्रगट नवरात्रि आती हैं और दो गुप्त नवरात्रि आती हैं। जो प्रगट नवरात्रि होती है वो मार्च अप्रैल में आती है, जो पहली होती है चैत्र नवरात्र कहलाती है।
0: जी जी।
1: दूसरी होती है गुप्त नवरात्रि, जो आती है आषाढ़, जैसे हम आषाढ़ नवरात्रि भी बोलते हैं, जो जून जुलाई में आती है, जो गुप्त नवरात्रि होती है। तीसरी जो आने वाली है वो है आश्विन नवरात्रि, जो सेप्टेम्बर अक्टूबर में आती है, जो प्रगट यू नो कहलाती है, प्रगट नवरात्र कहलाती है। और उसके बाद में जनवरी और फरवरी में आती है आपकी एक माघ नवरात्रि, जिसे गुप्त
0: नवरात्रि
1: बोलते हैं। तो
0: क्या ये उसमें दश विद्या नहीं लागू होती है?
1: तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जो आपकी प्रगट नवरात्र होती है उसमें नव दुर्गा की जो है स्तुति की जाती है।
0: अच्छा।
1: और जो जो आपकी गुप्त नवरात्राएं होती हैं उसमें वहां पे आपकी दश महाविद्याओं की पूजा की जाती है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो ये ऐसे इसका पूरा का पूरा जो है रिलेशनशिप है। तो मेरी मैं जस्ट आई विल कंटिन्यू माई यू नो जर्नी। तो हुआ ये कि फिर मेरे को पता पड़ा कि जो जो शनि भगवान हैं उनका जो रूलिंग देवी हैं दश महाविद्या में वो माँ काली हैं एक्चुअली।
0: अच्छा।
1: राइट। सो दैट्स हाउ इट गॉट कनेक्टेड। और उसके बाद में मैंने और मैं उसी समय में बिटवीन द पीरियड ऑफ जब मैं दुबई में था 2013-2014 के करीब, तो मैं कायस्थ वंश इंटरनेशनल से कनेक्ट हुआ डॉक्टर दिनेश निगम जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वीनर हैं बेसिकली, फाउंडर हैं, और उनके मार्गदर्शन में मैं वहाँ पे जो है वहाँ पे वॉलंटियर वर्क भी करने लगा एक्चुअली दुबई। अच्छा। में। और मेरे को बहुत ही मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग में जाके भी डिफरेंट अपनी जो कायस फैमिली उनसे मिलता रहा। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक तो कनेक्ट हो गया था कि बिटवीन यू नो शनि भगवान और जो है माँ काली, लेकिन मेरा एक जो कनेक्शन था जो हमारा चित्रगुप्त भगवान जी हैं, तो मेरा उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया था। मैं सोचा था कि इसका क्या कनेक्शन है, और मैं आर्किटेक्ट हूँ एक्चुअली, तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कनेक्शन इन एवरीथिंग। सो हुआ ये कि जब मैंने माँ काली के उसमें आया, तो सबसे पहला ये था कि मैं माँ काली की जो है एक मूर्ति स्थापित करना चाहता था अपने घर में। तो जनरली सब लोग बहुत डरते हैं, राइट, माँ काली का जिस तरह से स्वरूप है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च किया कि मैं किस तरह की माँ काली का जो स्वरूप है उसको है ना मैं अपने घर के अंदर रख सकता हूँ, राइट। तो आपको बता दूँ माँ काली के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, 10 स्वरूप हैं, जैसे चिंतामणि काली होती है, स्पर्शमणि काली होती है, संतिदापरता काली होती है, सिद्धि काली होती है, दक्षिणा काली होती है, कामकला काली होती है, हंस काली, गुहा काली, शमशान काली, भद्र काली। तो इसमें से जो कुछ रूप हैं उनके वो जो है सौम्य रूप हैं और कुछ जो हैं उनके उग्र रूप हैं।
0: अच्छा।
1: ठीक है। तो जब आप घर में आप किसी की पूजा करते हैं माँ काली की, तो आपको उनका सौम्य रूप में पूजा करनी चाहिए एक्चुअली, सात्विक रूप से,
0: नहीं करना चाहिए।
1: तो वो जो है तांत्रिकों के लिए होती है बेसिकली। तो मैंने सौम्य रूप जो है उनका आध्या काली का जो है मैंने अपने घर में रखा, और उसके बाद से मेरे को एक दर से ना जैसे एक बुलेट ट्रेन होती है।
0: अच्छा।
1: उस तरीके से मेरी एक गति स्टार्ट हो गई एक्चुअली,
0: मतलब वो एनर्जी आपको आने लगी,
1: मेरे को तुरंत कनेक्ट किया, और यू नो लाइक मैं दिन रात उनकी भक्ति करने लगा एक्चुअली। वो टाइम है आई थिंक 2024 से लेकर और आज तक का समय है, मैं अभी आने से पहले भी पूजा करके आया हूँ। तो डेली मैं एक घंटे मैं माँ की पूजा करता हूँ एक्चुअली, माँ के साथ में चित्रगुप्त भगवान और दश विद्या और सारे भगवानों की मैं पूजा करता हूँ।
0: चलिए, इतनी बात आपने कही माता की, तो माता का ये गीत भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे।

0: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: Har Ravivar suniye Darpan Hindi Kaikam, 98.5 FM par, subah 9 se 11 baje tak.
2: Shri Om ki nayi respite care seva aapki subhidha ke liye taiyar hai. Kya aap chuttiyon mein swasthya labh hetu एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो। हमारी सेवाएं ललौर बाग व वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डेमेंशिया सपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300 908 681। ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश।
3: श्रोताओं, आज हम पराग श्रीवास्तव जी से बातचीत कर रहे हैं और ये धार्मिक चर्चा है। तो श्रोताओं, मैं पराग जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि मैं तो खुद श्रीवास्तव हूं तो मुझे पता है कि भगवान चित्रगुप्त जी कौन हैं और भगवान के दरबार में चित्रगुप्त जी का क्या रोल है। लेकिन मैं चाहती हूं कि पराग जी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि हम कायस्थों के लिए चित्रगुप्त जी का नाम कितना महत्वपूर्ण है और हम क्यों इनकी आराधना करते हैं।
4: जी, तो ये इतिहास तब से स्टार्ट हुआ जब यमलोक में यमराज जी पूरा कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा कार्य हो गया था कि वो खुद भी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे और उनको किसी सहभागी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे किसी न किसी साथी की जरूरत है,
3: असिस्टेंट की जरूरत
4: या तो जरूरत है, तो आप प्लीज़ थोड़ी मदद करिए। तो जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उन्होंने 11,000 वर्ष तक जो है पूजा करी और उन्होंने तपस्या करी और उसके बाद में उनकी जो ब्रह्मा जी की जो काया से है वो उत्पन्न हुए चित्रगुप्त भगवान जी, राइट।
3: अच्छा, तो इसलिए कायस्थ बोलते
4: हैं, तभी उनको कायस्थ भी बोला जाता है बेसिकली,
3: क्योंकि काया ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न
4: ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए, तो इसलिए उन्हें कायस्थ बोला जाता है और उनका नाम चित्रगुप्त भी पड़ा, चित्रगुप्त आगे जाके भी पड़ा। तो चित्रगुप्त का मतलब ये होता है, दो अर्थ होते हैं कि जो चित्त में गुप्त हो। तो अच्छा। भगवान जो चित्रगुप्त हैं वो जो है ब्रह्मा जी के चित्त में गुप्त तरीके से थे, तो इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। और दूसरा एक कहा जाता है कि चित्र का मतलब होता है रिकॉर्ड, यू नो, जो चित्र होता है और रिकॉर्ड होता है, और गुप्त है जो गुप्त है आपके एक्चुअली, राइट।
3: अच्छा।
4: तो वो पूरे के पूरे जो आपके गुप्त रिकॉर्ड्स हैं उनका पूरा दस्तावेज लेखा जोखा अपने पास में रखते
3: अच्छा,
4: हैं
3: कि जो भी हमारे अच्छे या बुरे
4: अच्छे बुरे कर्म हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसलिए भी उन्हें चित्रगुप्त भगवान कहा जाता है। तो चित्रगुप्त भगवान के दो विवाह हुए, एक तो हुआ माता इरावती से जो थी ब्राह्मण कुल से थी, और एक उनका विवाह हुआ माता नंदिनी से जो क्षत्रिय कुल से थी। तो जो माता इरावती से जो उनके 8 पुत्र हुए, माथुर, गौड़, भटनागर, सक्सेना, अम्बस्ट, निगम, कर्ण और कुलश्रेष्ठ, ये जो 8 पुत्र हुए वो माता इरावती से हुए, और जो 4 पुत्र है वो माता नंदिनी से हुए, भानु, श्रीवास्तव जो आप और हम सब लोग हैं, सूर्यध्वज और वाल्मीकि और अस्थाना।
3: अच्छा।
4: तो बेसिकली टोटल मिला के 12 पुत्र हुए। और चित्रगुप्त भगवान के जो पूजा पूरे वर्ल्ड में की जाती है, लेकिन स्पेशली भारत में जो है पटना, कांचीपुरम, उज्जैन और अयोध्या, यहाँ पे उनके 4 धाम कहे जाते हैं।
3: अच्छा
4: जी।
3: तो और ये भी बता दो श्रोतागण, ऐड करना चाहूँगी कि दिवाली के तीसरे दिन जो है वो हम एक दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं जितने भी कायस्थ हैं, और ऐसा मानते हैं कि चित्रगुप्त जी निरंतर जो है वो हमारा अकाउंट लिखते रहते थे, सबके कर्मों को लिखते रहते थे, उन्हें कभी भी ब्रेक नहीं मिलता था, 2400 घंटा वो लिखते थे, और सिर्फ एक वो दिन था दिवाली के तीसरे दिन वो अपनी कलम रखते थे और उसी कारण उसी को सेलिब्रेट हम करते हैं। और हम कायस्थ लोग जो हैं वो कहते हैं ना पेन डाउन, तो उस दिन हम कोई भी लिखने पढ़ने का काम नहीं करते हैं, और इसे जो है कलम दवात की पूजा के नाम से भी जानते हैं। क्यों, सही है ना पराग जी?
4: हाँ, दो चीज़ें हैं इसमें एक्चुअली। चित्रकूट भगवान जी के दो पर्व बहुत इम्पोर्टेंटली मनाए जाते हैं। एक तो उनका होता है प्रगोट उत्सव।
3: अच्छा।
4: उनका जो वो प्रकट हुए,
3: प्रकट हुए थे,
4: तो वो आपकी जो है चैत्र जो मार्च अप्रैल में है जब पूर्णिमा आती है उस दिन मनाया जाता है बेसिकली। और जो दूसरा है जैसे आपने बताया यम द्वितीया के दिन यू नो दीपावली के भाई दूज के दिन जो है वो उस दिन कलम दिवात की हम लोग पूजा करते हैं और भगवान चित्रकूट का ध्यान करते हैं।
3: चलिए, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो पराग जी, ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को भगवान चित्रगुप्त जी का भक्त मानते हैं या माँ काली का, या आपके लिए दोनों की भक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है?
4: जी, तो मैं यहीं पे अपनी जो है स्टोरी कंटिन्यू करना चाहूँगा एक्चुअली। तो क्या हुआ मेरे साथ में, तो हुआ ये कि जब मैं माँ काली की बहुत ज़्यादा आराधना करने लगा तो मैं चारों, जैसे मैंने बताया, चारों नवरात्रा करने लगा जो है नौ नौ दिन बेसिकली। और नवरात्र में आपको पता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, ठीक ना, अनिवार्य है। तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा एक्चुअली, राइट। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुर्गा सप्तशती का जब मैं पहली बार अध्ययन कर रहा था, जो प्रथम अध्याय है जहाँ पे महाकाली का वर्णन है, तो दुर्गा सप्तशती को भी ना एक्चुअली तीन चरित्रों में विभाजित किया गया है।
3: अच्छा।
4: जो प्रथम चरित्र है वो महाकाली पे है, और जो दूसरे से चौथा अध्याय है जो द्वितीय चरित्र कहलाता है वो महालक्ष्मी पर आधारित है, और जो तीसरा चरित्र है वो महासरस्वती पर आधारित है।
3: अच्छा।
4: अध्याय पांच से लेकर तेरह तक। और इसे सप्तशती इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 700 श्लोक हैं।
3: अच्छा।
4: ठीक है, इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। बेसिकली जो मार्कंडेय पुराण है वहाँ पे जो 82 से लेकर 93 तक का जो पेज है, जो अध्याय है, वहीं से दुर्गा सप्तशती को लिया गया है।
3: अच्छा।
4: ठीक है, तो ये हमारे पुराणों
3: मार्कंडेय पुराण,
4: मार्कंडेय पुराण।
3: अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी।
4: जी, तो हुआ ये कि जब मैं प्रथम अध्याय पढ़ रहा था महाकाली के बारे में, तो वहाँ पे ये चीज थोड़ी सी मुझे पता पड़ी कि जब विष्णु भगवान जी के विष्णु भगवान जी जब योग निद्रा में थे, जब पूरा प्रलय काल चल रहा था बेसिकली, तो उस समय क्या हुआ कि उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा हुए, मधु।
3: अच्छा।
4: और कैटभ।
3: हाँ,
4: ठीक है। अब वो जैसे ही पैदा हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयत्न किया।
3: अच्छा।
4: ठीक है, जो हमारे मतलब दादाजी
3: उस ध्येय से वो पैदा हुए।
4: हाँ जी।
3: अच्छा।
4: तो उन्होंने जो है तुरंत जो है ब्रह्मा जी को मारने का प्रयत्न किया, तो ब्रह्मा जी ने बिकॉज विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी जो है योग निद्रा जो है योग माया है उसका उन्होंने ना बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी और पूजा अर्चना करी, तो उससे फिर है महाकाली उत्पन्न हुई। तो जैसे ही महाकाली उत्पन्न हुई तो तुरंत जो है विष्णु भगवान भी जो है योग निद्रा से जग गए बेसिकली, और उन्होंने फिर शुंभ और निशुंभ का मधु कैटभ है, मधु कैटभ का उन्होंने संहार किया बेसिकली।
3: अच्छा।
4: राइट। तो इसकी वजह से हमारे परम पूजनीय दादाजी जो है जिनसे हमारे चित्रकूट भगवान आए, जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी उन्होंने रक्षा की थी।
3: अच्छा।
4: ठीक है।
3: जी,
4: तो ब्रह्मा जी ने उस चीज के लिए जैसे ही

0: चंडी में ना महाकाली के उपासक हो गए बेसिकली, ठीक है। तो नगरकोट जो आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा का क्षेत्र है बेसिकली, तो वहाँ पे आज भी देखेंगे तो चंडी माता का मंदिर है वहाँ पे। अच्छा। वो है ना वन ऑफ द शक्तिपीठ भी है हमारे 51 शक्तिपीठ में। तो फिर तो ऐसे इस तरीके से जो है काली माता जो है हमारी चंडी माता जो है वो भगवान चित्रगुप्त से एसोसिएटेड हुई, और भगवान चित्रगुप्त जी को जो अष्ट सिद्धियाँ मिली वो उन्होंने जो है उन्होंने पूजा की थी जो है षोडशी और त्रिपुसुंदरी माता की, ठीक है। और वहाँ से पूजा करने के बाद में उन्हें असिद्धि प्राप्त हुई, उसे श्री विद्या भी बोलते हैं। अच्छा। और ऐसा बोला जाता है कि जो श्रीवास्तव नाम पड़ा
1: जी
0: वो श्री विद्या का अनुसरण करते थे हमारे पूर्वज जो श्रीवास्तव थे, इस वजह से उन्हें का नाम भी श्रीवास्तव पड़ा।
1: क्या बात है, देखिए आई फील वेरी इम्पोर्टेंट ना कि मतलब कुछ रोल हमारा भी धर्म में रहा है इम्पोर्टेंट
0: जी। तो इस तरीके से सारे डॉट मेरे कनेक्ट हो गए।
1: अच्छा। कि तो ये जो भी आपको जानकारी है, ये रिसर्च आपने किया, ये कैसे मतलब इतना आपको समय मिला और इतना पढ़े? या अब मैं आपसे पूछने वाली थी 51 शक्तिपीठ के बारे में, लेकिन चूंकि सवाल हमारे पास ज़्यादा है इसको अगली चर्चा के लिए छोड़ते हैं। तो हाँ, आप अपनी कहानी जारी रखिए।
0: हाँ, तो यही है कि जैसा आपने शुरुआत की थी और हम लोग बात भी कर रहे थे कि कई बार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, ये जो है भगवान है और जो माता है वो ही आपको राह दिखाती हैं बेसिकली, और सीरियसली हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता रहता है। तो उसके बाद में मैंने भारत धर्म एकेडमी की नींव रखी एक्चुअली, और
1: ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में,
0: ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मैंने नींव रखी 2025 के अंदर जनवरी के अंदर। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने उसकी नींव रखी, मेरे जितने भी मतलब जिसके जितने भी अप्रूवल थे वो तुरंत के तुरंत अप्रूवल आ गए, जो ACNC से रजिस्ट्रेशन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट का, वो तुरंत के तुरंत आ गए। जैसे सब कुछ मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने यही बताया कि इतना इजी होता नहीं है कि अच्छा। इतना अप्रूवल मिलना और रजिस्ट्रेशन होना तो वो सारे के सारे आ गए। तो मेन विज़न यही था कि मुझे परमानेंट जो है माता काली का और दश महाविद्या का और भगवान चित्रगुप्त जी का जो है मंदिर स्थापित करना है बेसिकली।
1: जी, मेरा यही अगला सवाल था कि आपका जो विजन है कि आप माँ काली और चित्रगुप्त जी के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, तो हाँ इसके बारे में हमें बताइए कि क्या इसमें निर्माण कार्य कैसा चल रहा है, क्या इसकी शुरुआत हो गई है, किस स्थान पे आप कर रहे हो, वगैरह वगैरह।
0: जी, ये ना थोड़ा सा अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, तो आपको मैं बता दूं कि है ना ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी सिडनी के अंदर ऑलरेडी सिडनी काली टेम्पल ऑलरेडी है सिल्वर वाटर में, जो पिछले 16 साल से ऑलरेडी ऑपरेटिंग है। तो मेरे विज़न कभी भी जो था टेम्प्ररी जो है प्लेस क्रिएट करने का नहीं था, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बीन ऑपरेटिंग। मेरे को परमानेंट स्पेस यू नो एस्टेब्लिश करना था, दैट वाज अ विज़न बेसिकली। तो काफ़ी बड़ा विज़न था, तो उसकी स्टार्ट कैसे की जाए, राइट? तो मेरे दिमाग में हमेशा यू नो ये थिंकिंग थी। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी बिफोर आस्किंग समथिंग बैक, राइट? तो इसलिए हमने सोचा, और मेरा एक ये विज़न था कि मंदिर ही नहीं स्थापित करना है, आपको गुरुकुल स्थापित करना है बेसिकली। अच्छा। जहाँ पे एजुकेशन भी हो सके प्लस यू नो हमारा पूजा पाठ भी हो सके, दोनों चीज़ें हो सके बेसिकली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया जाए, विच वी कैन स्टार्ट क्विकली बेसिकली, और उसके बाद में वी विल टेक इट टू द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल। सो हमने पूरी अपनी वेबसाइट डेवलप करी, और सबसे पहले जो है सनातन इंसाइक्लोपीडिया बनाया, जहाँ पे करीबन 1500 से जो ऊपर जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमने डाले, जहाँ पे लोग आके फ्री में पढ़ सकते हैं बेसिकली। और साथ में ही पंचांग, ज्योतिष और करीबन 250,000 टेंपल्स की इन्फॉर्मेशन और करीबन 25,000 वीडियो ब्लॉग्स, वो सब हम लोगों ने पूरा डाला।
1: तो ये लिंक के बारे में बताइए, श्रोतागण कैसे देख सकते हैं इसको?
0: हाँ, तो हमारी वेबसाइट का नाम है BDA.AI, भारत धर्म अकेडमी .AI, सो BDA.AI है
1: जी।
0: और हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है लोग जो टेक्निकल हैं पूरा का पूरा एजेंटिक फ्रेमवर्क बताया। तो आप वहाँ पे आस्क महाकाली के नाम से चैट है वहाँ पर, आप वहाँ पे सीधे जाके आप पूछ सकते हैं कि आज का मेरा समय कैसे रहेगा, या फिर मेरे जैसे मेरे बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, इसका आपको समाधान, मेरे को समाधान कैसे मिलेगा। तो हमारा जो पूरा का पूरा पीछे जो यू नो ऑर्केस्ट्रेटन प्लेटफॉर्म है, इंजन है, वो आपके जो

0: ज्योतिष शास्त्र से पता करके, आपके पूरा ज्योतिष के बारे में पता करके, आज के पंचांग के हिसाब से पता करके, आपको बहुत ही टेलर्ड जो है आंसर देगा बेसिकली।
1: तो
0: और
1: ये
0: ऑल्सो
1: आंसर जो है वो एआई दे रहा है या कोई
0: नहीं
1: वाकई
0: नहीं वो
1: पंडित?
0: हमने ट्यून इन किया है बहुत
1: अच्छा
0: स्पेसिफिकली जो
1: जी
0: हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, तो
1: जी
0: आपको इवन सोर्स भी पता पड़ेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन से सोर्स के थ्रू आ रहा है। एक्चुअली
1: जी
0: बहुत ही ज़्यादा हमने टेलर्ड सोल्यूशन बनाया है। तो आज आप देख लीजिए, पिछले 1.5 साल के अंदर करीबन 300,000 से भी ऊपर जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं, और फिर हमने अपना यूट्यूब पे भी काफ़ी अपनी इनरिच बढ़ाई। एक्चुअली हम लोग 51 शक्तिपीठ और जितने भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालने लगे हैं, तो आज हमारे 125,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं यू नो
1: क्या
0: यूट्यूब
1: बात,
0: चैनल पे।
1: बहुत
0: और
1: अच्छी बात।
0: सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई इसकी वजह से, बिकॉज मेरे को फिजिकली भी जो है टेम्पल एस्टेब्लिश करना था, तो उसकी वजह से मुझे जितनी भी टेम्पल एसोसिएशन से मिलने का मौका मिला, जितनी भी काउंसलर से, मिनिस्टर से, जो यू नो और जितनी भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं, और इन सब से मिलने का मौका मिला। और मैं बहुत ही बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराधा पौडवाल जी का, और वो
1: अच्छा
0: महाकाली की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो सबसे पहले आगे आईं 2025 के अंदर। उन्होंने हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, मैसेज भेजा, और यू नो उनका एक ही विज़न है कि जो हमारा विज़न है कि जो है टेम्पल एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे सिडनी में, परमानेंट प्लेस
1: जी,
0: फॉर माता। सो दैट्स वेयर
1: चलिए
0: वी
1: इस
0: आर हेडिंग
1: दिशा में
0: टुवर्ड्स।
1: आप पूरे प्रयत्नशील हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्दी से जल्दी हमें मंदिर देखने को मिले, चित्रगुप्त जी का भी और माँ काली का भी। तो एक मन में सवाल उठता है कि माँ काली का स्वरूप इतना शक्तिशाली है, इतना उग्र है, तो इसके पीछे क्या कोई आध्यात्मिक संदेश है? माँ काली के हाथ में तलवार और गले में मुंडमाला, ऐसे प्रतीकों का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? कुछ
0: जी
1: थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए।
0: जी आप यदि माँ काली की जो मूर्ति है या माँ काली का जो स्वरूप है आप
1: जी
0: उनको देखें, तो उनके खुले हुए बाल हैं,
1: जी
0: तो यू नो वो ये दर्शाता है कि वो मुक्त केशी हैं, मतलब वो किसी के बंधन में नहीं है
1: जी
0: बेसिकली, राइट।
1: जी
0: वो समय और काल से भी बहुत ज़्यादा परे हैं,
1: परे
0: ठीक है।
1: हैं
0: उनके हाथ में मुंड है, ठीक है, और जो हाथ में लटका हुआ है, और उनके हाथ में खप्पर है, वो ये चीज़ दिखाती है कि यू नो आपके अंदर यदि अहंकार होगा तो वो यू नो अहंकार को काट देंगी बेसिकली। हमारे में कई बार होता है ना कि मैं कर रहा हूँ ये
1: जी
0: सब चीज़ें,
1: जी
0: ठीक है। तो इसी चीज़ का उन्होंने संदेश दिया है जो यू नो उनके हाथ में मुंड है बेसिकली और खप्पर है, कि आप में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जो उनके गले में जो 50 मुंडमाला है वो एक्चुअली संस्कृत के यू नो 50 अक्षर हैं बेसिकली, जिससे पूरी
1: अच्छा
0: शब्दावली बननी है, जिससे पूरे के पूरे मंत्र बने, तो वो
1: अच्छा
0: उसका
1: ये नहीं
0: मूल
1: पता था
0: स्वरूप
1: कि
0: है,
1: 50 मुंडमाल हैं।
0: 50 हैं। तो
1: अच्छा
0: वो सारा का सारा जो है, ये जितने भी मंत्र बने हैं, जितने
1: जी
0: भी शब्द बने हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं, उसके पीछे जो मूल ऊर्जा है वो माँ काली ही है एक्चुअली।
1: बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो चित्रगुप्त जी के कर्मों के लेखे से और माँ काली शक्ति तथा नकारात्मकता के विनाश से जुड़ी हैं, क्या आपको इन दोनों आराध्य शक्तियों के बीच कोई आध्यात्मिक संबंध दिखाई देता है?
0: जी जी बिल्कुल। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आपको पूरी अपनी जर्नी बताई कि भगवान चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं बेसिकली, और माँ काली जो है वो समय से और काल से भी बहुत ज़्यादा परे हैं, और काली जी का माता का ये है कि आप में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यदि इसमें संबंध यही है कि दिन रात यदि हम लोग जो डे टू डे हम लोग जो कर्म करते हैं, राइट, हम लोग उसे यदि भगवान पे अर्पित करके निस्वार्थ भावना से हम लोग बिल्कुल डे टू डे करते रहें, ठीक है, तो भगवान चित्रगुप्त, माँ काली और जितनी भगवान है आपकी, उनकी उनके ऊपर कृपा आप पर हमेशा रहती रहेगी, और
1: जी
0: आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही संदेश है।
1: बहुत सुंदर बात, और हम चाहते हैं कि सभी लोग, हम लोग जो हैं, इसको ध्यान में रख के ही आराधना करें और इस पे काम करें। खासकर अपने अहंकार पे तो ज़रूर काम करना चाहिए। जी
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छी चर्चा रही, आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए। लेकिन अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति चित्रगुप्त जी के कर्म सिद्धांत और माँ काली की शक्ति एवं निर्भयता को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
0: जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान खुद ही जो है दिशा दिखाता है। तो मैं एक छोटी सी बात जो मैं आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अभी, जस्ट है ना, जस्ट जन्माष्टमी की बात है एक्चुअली, राइट। तो हुआ ये मेरे साथ में कि जब मैं जन्माष्टमी में, हर जन्माष्टमी में सिडनी काली टेम्पल है जो 16 साल से एस्टेब्लिश्ड है, मैं वहाँ पर गया एक्चुअली, और लिटरली मैं उस दिन से काफ़ी चेंज हो गया, मतलब मेरे को बहुत ही बड़ा। तो मुझे उस दिन पता पड़ा कि महाकाली का जो टेंपल है उसे रिलोकेट करना पड़ रहा है बेसिकली। अच्छा। क्योंकि बिकॉज जो है जो वहाँ का ओनर है
1: वहाँ पे था और
0: हाँ, वहाँ पे जो ओनर है वो कुछ और करना चाहता है, ही हैज़ अ डिफरेंट विजन बेसिकली। और अगले दिन ही, जन्माष्टमी के अगले दिन ही हमें पूरा रिलोकेट करना था।
1: अच्छा।
0: तो मुझे जन्माष्टमी के रोज ही पता पड़ा, तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैं सब कुछ यू नो परमानेंट प्लेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे टेम्पररी स्पेस है ना, यू नो ही नहीं है एक्चुअली, राइट। तो ऐसा है ना कि आपकी खुद की माँ के पास में, मतलब यू नो किराए का घर नहीं है और आप परमानेंट घर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसने मेरे को काफ़ी इफेक्ट किया अंदर से बेसिकली। और मैंने तुरंत ही प्रण लिया, फिर मैं अगले दिन मैं उनकी सहायता करने भी आया, जो हमारी बंगाली एसोसिएशन है, मैं उनकी सहायता करने आया। तो यू नो लाइक भगवान आपको हिंट देता रहता है। तो जो महाकाली की जो जो प्रतिमा है उसको MMI जो टेंपल एसोसिएशन है, महाराष्ट्र जो टेंपल एसोसिएशन है, उन लोगों ने टेम्पररी 31 जनवरी तक महाकाली की जो प्रतिमा है उसको वहाँ रख रखा है बेसिकली। और तब तक का हमारे पास में समय है। और जो दूसरी प्रतिमाएँ थी जैसे महालक्ष्मी की
1: जी,
0: और यू नो 200 साल पुराने जो हमारे पास में शिला थी, यू नो नारायण शिला थी, वो मेरे घर पे आ गई एक्चुअली, राइट। तो काफ़ी सारे, तो मेरे को बताया गया कि ये 150 से 200 साल पुरानी शिलाएं हैं और ये है और महालक्ष्मी
1: है, वरदान
0: है। तो मेरे को हमेशा हर समय हिंट मिलते रहे हैं कि यू नो लाइक मुझे क्या करना है नेक्स्ट, राइट। तो मैं तुरंत लग गया हेल्प करने में और यू नो माता की कृपा से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हैं। लेकिन आप देखिए, जो मैंने पिछले 1.5-2 साल में इतने कनेक्शन बनाए, राइट, यू नो जितने भी टेंपल एसोसिएशंस हैं, काउंसलर्स हैं, काउंसलेट्स हैं, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। तो देखिए कहाँ की चीज़ कहाँ काम आती है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वो उन्होंने मदद करी और हमारे पास में हम लोग, वी आर ट्राइंग टू यू नो, वी हैव सम प्लेसेस इन आवर माइंड, वी आर ट्राइंग टू यू नो गेट इट कन्वर्टेड बेसिकली। तो धीरे धीरे जो है विजन की तरफ ही आगे, हाँ, हम लोग अपनी विजन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, टेम्पररी एस्टेब्लिश करने के बाद परमानेंट। तो आपने जब मेरे से पूछा तो आप बस भगवान पे छोड़ दीजिए एक्चुअली, राइट। आपको भगवान राह दिखाता रहेगा, आप क्वेश्चन मत करिए उसके बारे में कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बस आप बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। और कुछ भगवान ने आपके बारे में डिसाइड किया है, ठीक है। और हमारा जो, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई है मेरे साथ में, जैसे हमारा जो ज्योतिष इंजन है जो BDA.AI पर है ना, तो जब मैंने उसमें सब कुछ डाला तो पता पड़ा, उसमें भी उसने बहुत क्लियरली मेरे को बताया, ये सब चीज़ बाद में हो रही है, कि मेरी इष्ट देवी जो है माँ काली हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, सनातन धर्म मिथ्या है एंड ऑल दिस थिंग, आप प्लीज़ यू नो मेरी खुद की कहानी है और यू नो इतना एक्यूरेटली सब चीज़ें मेरे संग में काम करिए।
1: और आपकी कहानी बहुत बिलीवेबल है पराग जी, और मात काली या हर भगवान जो है हमेशा हमें गाइड करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हम उस आवाज को सुनते
0: नहीं या इग्नोर कर देते हैं, शक करते हैं एक्चुअली। हाँ। हमारा अहंकार बीच में आ जाता है
1: जी,
0: तो हम लोग सोचते हैं कि अरे यू नो लाइक किसी ने आपको इन्वॉल्व किया है तो मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए, या फिर लाइक आपका बहुत सारे अहंकार बीच में आ जाता है,
1: बिल्कुल।
0: तो यदि आप उसको काट के आप धर्म के तरफ आगे बढ़ते रहे तो वो ही आपको खुद ही, क्योंकि ये इस जन्म का तो है नहीं
1: जी, जी।
0: राइट, ये आपके जन्मों जन्मों से चीजें चलती आ रही हैं, राइट। आपके पूर्व जन्म में भी जो इष्ट देव या देवी थे वही हैं जो इस जन्म
1: संस्कार चले आते हैं, और माता पिता के भी संस्कार होते हैं। लेकिन होता ये है कि हम हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं, पहली बात कि हम अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं
0: जी,
1: किसी भी सेवा में, अगर सेवा तो किसी सेवा भाव से होनी चाहिए ना, किसी स्वार्थ से नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो पैटर्न देखती हूँ, हमेशा लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं कि भाई हमारा नाम पहले,
0: मेरा हाँ, मेरा क्या है, यस, बिल्कुल।
1: है ना, मेरा नाम पहले हो, बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, इसलिए जो भगवान का संदेश है वो हमें डायरेक्ट मिल नहीं पाता है
0: जी।
1: तो जो आप कह रहे हैं, श्रोतागण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप जुड़ें उनसे, बिना किसी वजह,
0: और मदद करते रहिए, राइट। अभी हमारा जो है बी क्रॉफ्ट के अंदर जो है अक्टूबर के अंदर नवरात्रि के दिन 17 जो अक्टूबर है वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है दुर्गा माता का एक्चुअली, राइट, जो हम लोग इसी पर्पस से कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है सिडनी काली टेम्पल को टेम्पररी एस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। तो आप आइए प्लीज, आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: उसका डिटेल बता दीजिए आप कि क्या एड्रेस है।
0: बी क्रॉफ्ट कम्युनिटी सेंटर में होने वाला है और ये है 17 अक्टूबर को है और दुर्गा माता की हम वहाँ आराधना करेंगे।
1: समय
0: समय जो है सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक है रात को, और जो पूजा है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी और 7 बजे हम लोग कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। तो काफ़ी ये जो एसोसिएशंस हैं वो काफ़ी हेल्प, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी जो है, सांस्कृतिक और कल्चरल जो नृत्य हैं वो सब वहाँ पे परफॉर्म होंगे। और मेन विज़न ये है कि हम लोग माता के लिए कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें, ताकि बिकॉज आपको मालूम है यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, यहाँ पे मेनली $50,000 पर ईयर का हमें देना ही है एक्चुअली, राइट, टेम्पररी होम के लिए भी, राइट। तो वो हमारा रहेगा मेन, और हम लोग साल में ये दो इवेंट मेनली करते हैं, दुर्गा माता का और काली माता की पूजा है, उसके अलावा जन्माष्टमी भी रहती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हम लोग करते रहते हैं। और मेन विज़न ये है कि सब लोग सामने आएंगे, सब लोग इकट्ठा होकर चलेंगे
1: जी,
0: और सब लोग साथ में मिलके करेंगे, तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है।
1: हाँ, और ये काम पूरा हो जाए तो धन्यवाद पराग जी यहाँ आने के लिए, और इतनी गूढ़ जानकारी आपने दी काली माता के लिए और चित्रगुप्त भगवान जी के लिए। तो श्रोतागण के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें ये सब बातें सुन के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंदिर निर्माण के लिए चित्रगुप्त जी और काली माता के लिए, और जुड़े रहिए जो भी मंदिर कार्य में या जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आप हमारे श्रोताओं को उससे अवगत कराते रहिए।
0: बिल्कुल,
1: और चर्चा जारी रखेंगे।
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार,
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू।

0: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
1: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: श्रोताओं, पहली अभी भी जारी है। आप लोग जो आज की पहली है, गणेश जी के पसंद की मिठाई कौन सी है, और इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में, अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पर भेज सकते हैं, और अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं तो आप हमारे फ़ोन पे एसएमएस करके भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0468-467-196।
5: सुनील जी, एक बात ऐड करना चाहती हूँ पहली से के संबंधित। पहले तो ये सूचना पढ़ दूँ मैं कि कुटुंब परिवार जो है वो कुटुंब उत्सव मना रहा है, जो कि आज के ही दिन है। इसका नाम है कुटुंब उत्सव मल्टीकल्चरल फेस्टिवल 2026। तो 20 सितंबर आज के दिन मनाया जा रहा है, और ये